0: कोसुरु यानी सफ़र करना की ते शक्ल है रियोकोश्ते, इसके बाद इमस लगाने से ये बनेगा रियोकोश्ते इमस।
1: तो सामिन सुनिए और दोहराइए। आज के मकालमे का एक जुमला निहोन्नो को तो खाई गई नी शोकाई स्टेमस यानी मैं जापान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवा रही हूँ भी इसी अंदाज का जुमला है, जिसके जरिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में बताया जा सकता है।
0: जी हाँ, शोकाई स्टेमस यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शोकाई सुरु यानी मुतारिफ करवाना की ते शक्ल शोकाई स्टे के बाद इमास लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
2: ड्योकोउ देसु का? हाई, आचकोची ड्योकोउ शिते इमासु।
0: और अब मकालमे की तशरीह।
2: ड्योकोउ देसु का?
1: क्या आप सफर कर रहे हैं?
0: ड्योको एक इस्म है जिसके मायनी है सियाहती या तफरीही सफर।
2: हाई, आचकोची ड्योकोउ शिते इमासु।
1: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
0: हाई यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायनी है इधर उधर।
1: तो सामिन सुनिए और दोहराइए। सामिन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
3: ड्योकोउ देसु का? हाई, आचकोची ड्योकोउ शिते इमासु। हाई, あちこち旅行しています。
0: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
3: निहोंगो। निहोंगो
0: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शक्ल है
3: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते
2: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु। निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
0: और अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
3: शिगोतो। शिगोतो
0: करना की जापानी है सुरु, और इसकी ते शक्ल है
3: शिते। शिते
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: शिगोतो शिते इमासु। शिगोतो शिते इमासु।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
1: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है
0: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु।
1: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
3: हितोत्सु, फ्तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
0: आज के मकालमे में सयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
3: ओ सोबा फ्तात्सु ओ नेगाई शिमास।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
6: हाय,
5: निहों ए वा कांको देसु का?
6: वातासी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिते इमासु। सोरे दे निहों ओ ryokou shite imasu।
7: सोरे वा सुबारासी ने।
6: ओमातासे शिमाशिता।
1: और अब खाने के शौकीन काइतो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू सोबा है।
0: सोबा जापान का एक मकबूल रिवायती खाना है। सोबा नूडल्स स्या गंदुम के आटे से तैयार किए जाते हैं। इन्हें उबालकर सोया सॉस वाले ठंडे सूप में डुबोकर या हल्के जायके वाली गर्म यखनी के प्याले में डालकर खाया जाता है। वैसे हिरा, जापान आकर आपने सोबा नूडल्स तो यकीनन खाए होंगे।
1: जी यकीनन, टेम्पुरा वाले सोबा नूडल्स मुझे बहुत पसंद है। वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं, तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
0: بلکہ

0: कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सुबह रेस्तरां होते हैं जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सुबह खा सकते हैं।
1: अच्छा अनवर साहब, सुबह के हवाले से एक बात बहुत हैरतअंगेज है।
0: अच्छा वो क्या?
1: जापानी लोग सुरप सुरप की आवाज के साथ सोबा नूडल्स को मुंह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज बहुत अजीब लगती थी।
0: जी ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
1: अच्छा तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
0: मियाँ जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सुबह की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सुबह रेस्तरां कदीम अंदाज के घरों में हैं, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पजीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सुबह नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरां शहरी इलाकों से वहाँ आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरां का सोबा बनाने का अपना मुनफरिद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़ अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।